करे प्रभ सोए रहो। राम नाम धन निर्मलो जो देवै देवनहार, आगै भूषण हो वही दिस बेली गुर करतार। आप छड़ाए छुट्टिया आपे बख्शन हार, मनमुख जाने अपने धियां पुत संजोग। नारी वेख वेखसिया नाले हरख सो सोग, गुरमुख शब्द रंगावले एनस हरस पहाप हरस भोग। चे चले वित जान दो साकत डोल अडोल।

जुग जुग भगती उपाया पैज राख दाया राम राजे हर नाख स दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया

संगारो प्रथम तरह भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विदनाना कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो चूक होय कबलिहु सुधारो कब बाज दोहरा

बिसन भगत की ये फल होई, आद ब्याद शिवै सकै न कोई। संबद सतर सहस पचावन, हाड़वदी प्रथम सुख दावन। त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधार, भूल परी लहो लेहो सुधार। दोहरा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए कर नौ निधि आवे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीन आरदा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सुचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के सां सुवासां सांग निभाया तिन्हां समूह शहीदां दी

बेपरवाह है ना, मौज है ना, घोड़ा है ना बाज है ना जोड़ा है, ता उस बेपरवाही मौज विच फिर भी मेरे कलगिया वाले पातशाह बाजा वाले बेपरवाह दे बोल बोल रहे ने। ते जेड़े रब दे प्यार वालियां रूहां हुंदियां ने जिन्हां दी सुरत विचों, हां जी जिन्हां दी सुरत विचों शब्द नहीं जांदा, टेकिया होया शब्द है, वह बेपरवाह हो जाते हैं, वह भी नहीं किसी की परवाह मनते। तो सतगुरु जी दे अमृत बोलना है, गरीब नवाज जी कहिंदे बेपरवाह, बेपरवाह सदा रंग हरक है, रंग विच प्रेम दे विच दुनिया तो बेपरवाह हो जाते हैं, बेपरवाह सदा रंग हरक है। जा को पाख स्वामी, जिन्ना वाले मेरा वाहिगुरु है वह कले भी रह जाते तभी बेपरवाह, क्यों मेरे वाहिगुरु निरंकार करतार ने। ता मेरे गरीब निवास सचे पातशाह धन गुरु अमरदास सचे पातशाह जी कृपा कर दे सच्चा बेपरवाह है, यो सच्चा निरंकार करतार मेरा वाहिगुरु बेपरवाह है। तिस नू तिल ना तमाए, तिल मात्र तमो नहीं है, रब दे प्यारे वेरे तमो नहीं है, रजो तमो सतो, गुरु का सिख जड़ा है एदे तो हमेशा नरलेप रहिंदा है। अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए, प्रतख मुख विच गुरा गुरमुखा दे रसना द्वारे अमृत नाम दी

इतनी हाजिरी प्रवान करके आशीष बख्शना, भुला चुका दी खिमा करना, आशीष बख्शो सतगुर मेहर पर आशीष ते हथ रख के सेवा लैन, आओ सारे रल के आनंद साहब।

वाहगुरु। एक ओंकार श्री वाहगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहा साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाह देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सुचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघणिया ने धर्म हे सीख दिते बंध बंध कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सुवासां सांग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो दयागत।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

सुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन ठरै प्रभ सिमरत काश बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंधन जागै।

अतपारी अर्को नाम घन माहि उदारी अनुग पुनः चरण करत नहीं तरा अर्को नाम कोट पाप पर हरा गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुए सुखिया लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निसुतरा अनक माया।

शुद्ध कावे काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊंच। नानक नाम उदरे पथ बह मूच, बहुत सियाण जमका पाओ व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन्ना त्रापै, पेख अनेक अगन नहीं बिजय, कूट पाव दृगे नहीं सिजय, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगली जम डान।

अर्थ बुझे डोरा निष्कय तो समझे पूरा कहां बिशन बद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती कराए नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाई सो आवे ना चीत जो बै राई ता स्यो प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसै अंध केल माया रंग रसै दृढ़कर माने मने प्रतीत काला आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह चूड़ बिकार महालो त्रो याहो जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लो आपन कर कर्म।

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तुष ठाकुर को रघुमन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तुषको सिमरत परम गद पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर।

नानक जो भाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे महल न लागे जरा ब्रह्म ज्ञानी के मनो ये प्रकाश जैसे धर भरिया घास ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाह अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सेजन भये नानक जिन पर व्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर भया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

ने कहा बड़ भरताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सर नानक, ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाए अदा खियर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंतरा पार, नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार।

मन ते ठरा इंद्री जित पंज दोख ते रहत नानकोट बदे को ऐसा अपरस वैष्णो सहज सुप्रसन्न विशन की माया ते हुए भिन्न कर्म कर तो वह ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत की तरसंग राछ है।

सगल त्यागे दुष्ट का संग, पंते भिन्से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म। सा संग पापा मल खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय विशन प्रीत। अर्घे जन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है। राम नाम सारस पीवस पंडित के उपदेश जग जीव है। हर की कथा हृदय में सावे, सो पंडित फिर जो न आवे। वेद पुराण सिमृत बुझे मूल, सुखम में जाने स्थूल। चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे कहु नाम। जो जो जपे तिस की गत होए, सासंग पावे जन कोए। कर कृपा अंतरतारे, पास ब्रेद मुक्त पात्र को तारे। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित ना पाइय, धर्म नानक तिस मिलाय। जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास। तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम।

राष्ट्रपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमे उदासी, कई कोट वेद गए स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब काप विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपा न कठोर, कई कोट अभ्यगात मने कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया सरम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना, कई गुण सिद्ध जदी जोगी, कई गुण राजे रस भोगी, कई गुण पंखी सर्प उपाय, कई गुण पाथर बृख रब जाए, कई गुण पवन पानी बह संतर, कई गुण देश भूमंडल, कई गुण ससियर सूर नक्षत्र, कई गुण देव दान इंद्र शेर शत्र, सगल समग्री अपना सूत धारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस नस्तार, कई गुण राजस तामस सात, कई गुण वेद पुराण सिमृतर शास्त्र, कई गुण की रत्न समुंद, कई गुण नाना प्रकार जंत, कई गुण किए चिर जीवे, कई गुण गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई गुण जख किरण पिशाच, कई गुण भूत प्रे सुकर मृगाच, सबते नेरा सब हूते दूर नानका अलप त्रया प्रभूर, कई गुण पाताल के वासी, कई गुण नरक सुर्ग निवासी, कई गुण जन्मे जीवे मरे, कई गुण बहु जूनी फिरे, कई गुण बैठत ही खाए, कई गुण घाले थक पाहे, कई गुण किए तरमंद, कई गुण माया मैं चिंत, जय जय भाणा तै तय राखे नानक सब कुछ प्रभ के हाथे, कई गुण भय भय रागी राम नाम संग तिल लागी, कई गुण प्रभु को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई गुण दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई गुण मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने बहुभांत प्रभते ब्रह्माहे समात, ताका अंत ना जाने कोय आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन्हो वतातम प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सा सादी जीवे, कई गोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को सा सा संभारे नानक।

भोए बहे बड़ राजा, कब भिखारी निज का साजा। कबू अब कीर्तमय आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तभी रहे, गुरप्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मोहन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू से साधन भुग्ञान।

जन्म मरे भोजन प्रमावे। धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा इसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहां मुक्ति आगे सुख पावे। तरमंता कर कृपावे त्रिन समान काश संग ना जावे, बहु लश्कर मान खुपर करे आस पल पितर साका हो विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, किनवे हो जाए बसमंत, किसे ना मदे आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी। गुरु प्रसाद जाका मिटिया अभिमान, सो जन नानक दर गए परमान। कोट कर्म करे हूं तारे, शरम पावे सगले बिरथारे। अनुक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अनुक जतन कर आत्म नहीं, दरबाय हर दरगे को कैसे घबाय। आपस को जो भला गावे, तसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मनो कहो नानक, ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कछोए, तब सुख सुख नाही कोए। जब जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी भी, तब लग नेचर नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा दे बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक छुटे। सहस घटे लक उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं गौराजय, सुभन मनोरथ वृथे सबका जय। नाम रंग सर्व सुखोय बड़ बाकी, किसे प्राप्त हुए करण कराम ना पे आप। सदा सदा नानक जाप, करण करावन करने आज के आद कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हो या पे आप। आप प्रभ सोए, जो किस कीनो सपने।

सो सेवक को किससे डराए। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोद सीजिया गुरप्रसाद तब जिया। जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल। न कि जन्मे न किश मरे आपन चलते आप ही कर। आपन जाम दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी तावरी सब श्रेष्ठ। आपे आप सकल में आप अनुग जुग द्रज थाप उथाप। अविनाशी नाय किश खंड धार धार रो ब्रह्मांड। अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए था नानक जाप। जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सकल संसार दुरे तन मंत। प्रभु के सेवक सकल उदार प्रभु के सेवक दुख बिसार। नापे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल। उनकी सेवा सोई लागे सुनू कृपा करे बट भाग। नाम जपत बामे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किश कराय सो प्रभु कै रंग सदा सदा बस हर संग। सह सुभाए हो वह सो होए करण हार पछाण सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिससे उपजे तस्माहे समाये।

मनसा पूर्ण सरना जो जो कर पाया सोई हो घरन भरन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्रणा जाने होर अंदरू मंगल सत जाके सर्व जोग सुनिए घर तां के राज में राजोग में जोगी तब मैं तभी सर ग्रस्त में भोगी त्याए त्याए भगत ने सुख पाया नान तिसपुर का कने अंत न पाया जागी लीला की मितनाहे सकल देव हारे अब गाहे पिता का जन्म के जाने पूत है सकल प्रोही अपने सूत है।

करे एक रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभु नासी एक अंगार नाना चलत करे खिन माए पूर पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आवे बाय सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नानक हर नाम नाम के धारे सगले जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन सरावन कर कृपा से अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जागा सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सतपुरख सतपुरख सब माए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मल जिसे बुझाए तसे सब भली सतनाम ब्रह्म का सुखदाई विश्वास सतनान गुरते भाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जागे हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय कोय नाम जब तागी गत होए आप सत किया सब साते आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सुट सो करने हार बरना बूझ करत विचार करते कीमत ना जाने किया नान जो तस भावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जन

ज्ञानकेतानुसारष्टपदि सञ्जनामिल करो विचारे शिवरनाम आधार अवरूपाप समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कर सोप्रभ सम्राथ दृढ़कर कह हो नाम रथ ए तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण

आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब अकारे कशना दृष्टेता पापुंद कहते होता, जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्हना जापत हर सौ कौ किसे व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह का किसोबत परम, अपन के लावर तीजा नान करने हार न दूजा, जब होबत प्रभ केवल तनिता बंद मुगत कहो किसको गनी, जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन आवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी जो तराय तब गमन ने डर गमन कत डराय, अपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होय, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त

जय स्वरूप केवल जगदीत है शाल शिद्र लगत कहो कीस। जय जो सुरभी जो संग समावे थे किसे भूखम मंदिर बतावे। करण ग्राम करने हा नान करते का नाहे समार। जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब गमन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कलापे पर बीनत है वेद कथेब कह कौचीन। जब अपने आप आप उतारे तो शगन अब सगन कहाँ बिचारे। जबनु जाप नाप ने रात कौन ठाकुर कौन गये चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक नानक अपनिगत जानू आप। जा शल अशेद अभे समाया मुहा किसे ब्या बधमाया। आपस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश। जा एक है एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किसला गे चिंता। जी अपने आप आपति हारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बह बेन दूज देव चा नानक आपस को अभे बहु चा।

अष्टपदी आप कथे आप सुन्ने हारा पेका विस्तार जात भावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किशोया अपन सू सब जगत परोहे जागो प्रभ जुआ बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राके तिस गोए ना मारे सो मुआ जिस मनो विसार है तिस तज अब्र गां को जाए सबसे रेख निरंजन राय

पूरे गुरका सुनबदे सपार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन त्रिकुदरै चिंद आसन त्यागो द्रंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेंदी करहो सा संग अगन सागर तरहो हर धन के पर लियो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुरु गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक ए गुरु बजाके रंग अनेक गोपाल दा मोदन दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन मलीक लाले रतन सुंद कमाव तो उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मल्ला गहरंग जय जय शब्द अनाहत वाजे।

पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिगाड़ते रहते, राम नाम सुंदरसना कहते, कर प्रसाद या प्रभधारी, नानक ने भी खेब हमारी। प्रभु की सतगुरु संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुरु नाम, जिस मन बसे सोत निधान, सर्व इच्छा दागी पूर्ण होए प्रधान, पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उज पाया स्थान, भवर न होवे आमन जान, अर्थन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम सांत रिद नव रिद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शरान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके भाष सकल देवदास, सुंदर चतुर्थ का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए बल दिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एवं निधान जपै मन कोए, सब जुग मैं तागी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमृत।

निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

सोहन सदा सुवारे गावे इंद इदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ निरखी सिर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले गावे जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारे

भुगत ज्ञान दया भंडारन कड़ कड़ वाजे नाद आप नाथ नाथ ही सब जाकी हृदय सिद्ध अमरा।

बाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए।

है अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अदे है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगाज है, अपाज है, अचूज है, अचाज है,

ब्रह्म विदे नमो सहत्रपाने नमो अत्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी।

चतर चक्र काले, चतर चक्र पास है, चतर चक्र वास है, चतर चक्र मान है, चतर चक्र दान है, चाचरी छंद न सत्र है, न मित्र है, न परमं न पितर है, न कर्मं न काय है, न जन्मं अजाय।

गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। सो कहो टल गुर सेविया, एहनस सहज सुपाए।

तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो, हम बारक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो, हम बारक तुमरे तारे।

तुमरे शरण तुम्हारे आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

माया कारण तावहि मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सरान। जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान।

जागत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते है पूर्ण हो वह काम।

निज कर देखियो जगत मैं को काहु को नाहे। नानक तेर हर भगत है तेह राखो मन माहे। जग रच

योगाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक ओबहरा खाओ खट आओ पहोरा नद गाई अष्ट माल कौशक संग लाई पन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठा तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरस हिरी लै पहर जा संग लाई पंचों हर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सोहाई सरस बान ओ आहे बनोदा गावे सरस बसंत कुमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवा

आप कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औकांदरा कलियाना अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावे पंचो संग

जो प्रभु को मिलबो चाह खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा या की रहे कोई, कोई। तो आर होए सब मिलेंगे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसे।

पाय हस्तरत सब पवन तेज तनी पुमन चतुरंगा संग न चालो इनमें कछु है उठ सदायो नंगा हर कै संत प्रह प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाय नानकिया मुख सुख आ गए मुख उजल संग संतन कह पाई है जय श्री महला पंजमा घर तीजा दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद देव संदेश रो कहो प्रह के कहो विषम पई मैं बोब सुनते कहो सुहागन सही हो रहो को कतो सब बाहर बाहर को कतो सब मयो बन दिशे चैन लखिए सुहागन सात बुझियो सर्व निवासी गड़गड़ वासी लेप नहीं अल्पई हो नानक सुनो रे लोका संत रसन को बसी हो जैसे

0: स्वस्वामी तुम निकट बचानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबन नाई संपारा नाने सन पर जगबंधन राखो बिरद तुहारा
1: सुन प्यासे दूसरा सचित्व अंत नीत

संत दृढ़ दयालंग आश्रम गोपाल कीर्तन है निर्मलंग संत सगिण नानक परमेश्वराय चंदन चंदन सर दुरुत मूलना मिटे काम शीतल थीब नानका जपंदड़ो हरनाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदर सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरप भय मन तोट नावे मूल संचया नाम धन संत जना सुसंग पाए वड्डे पुन अठ पैर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान है नानक लिवचन माया पाए बिरंदड़ी बज गई रखंदड़ो प्रव्याप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जहाँ प्रभ दयाल नाम व्यापै माया कोट अगा गय नास हरेक त्याया निर्मल पै शरीर जन तूरी नाया मंथन पै संतोख पूर्ण प्रभाया तरे कुटम सग लोग कुल सबाया सलोक गुरु गोविंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुरु दयाल समरथ गुरु न गुर नानक पत दोधारण पौजल बेखम असगा गुरु बोहित है तारियम नानक पुर करम सदगुरु चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरुदेव जस संग हर जपै गुरु कृपाल जब पै ते अवगुण सब छपै

रसना हरजस्य सर्वक अधिष्ठान्ते को सुनियन्ते को वर्तन्ते को नरहर नाम दंजा चंत नानक दयाल पुरुख कृपा कर हिकसमला हरि कृपे अरदास नाम कीर्तन संचया नान सचिरास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक हो सब किसी आपे आप दूजा कह के हो।

रहो तुम कहियत जगत गुरुस्वामी हम कहियत कलयुग के कामें अनपंचन मेरो मन जो बिगार्यो पल पल हर जीते अंतर पार्यो जत देखो तर दुखी राशि अजो न पति आय निगम पैसाखी गौतम नार उमाप स्वामी श्री सुतरण सहस पग गामी इन जो तन खल बद करम हार्यो बड़ो निराज अजो नहीं हार्यो कह रविदास का कैसे कि जय बिघ्न रघुनाथ शरण का केले जय एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजुने सह भंग गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा कर पहला हार बिन रह न सक मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हार प्रभ गुर मेले बहु न पव जल फेरा रहाओ मेरा ही अर लोच लगी प्रभ के री हर नैनो हर प्रभ हेरा

हरि हृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्त पागा चंगेरा लो विकार जना मन लागा हर विसरा बुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड़ा ज्ञाने कहिए तन मस्त भाग मंदेरा बबेक बुद्ध सतगुरु ते पाई गुरु ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु तय पाया तुर मत भाग लखेरा टोटी महला पंजमा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद संतन अवर न काहु जाने बेपरवाह सदा रंगार कैरा

अल्लाह पंजवा प्रभ जी को नाम सदारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहो नाम जात नाम मेरे पत है नाम मेरा परिवार है नाम सखाई सदा मेरा संग हर नाम को निस्तार है भिख बिलास कहत बो तेरे चलतन कछु संगार स्मित नाम नानक को हर नाम मेरा भंडार है टोडी महला पंजवा।

रहो, चरण प्रकार करो, गुरु सेवा मने चराव भोग छोड़ आपत बाधंकार मान जोई मान सोई जोग संत टैल सोई है लागा जिसमत लिखिया लिखोग कौ नानक एक बिन दूजा बना करने जोग टोडी महला पंजवा सतगुरु आयो शरण तुहारी मेरा सुख नाम रसोबा चिंता लाय हमारी राव अवन न सूज दूजी ठहर हर पर तो द्वारी लेखा छोड़ लेखा छूटे हम निर्गुण ले हो बारी साध भक्त सिंध सदा मेहरबाना सबना दया धारी नानक दास संत पाचे परियो राख लियो ए बारी टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निध गायण शांत सहज रह समर उपज सगले दुख पलायण रहो जो मंगा सोई सही सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायण जनम दोहु ते चूट है पवजर जगत तरायण खोजत खोजत तत विचारे हो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाह जे नानक सदा सिमर नारायण टोडी महला पंजमा निंदा गुरु कृपा ते हट पार ब्रह्म पय प्रभ पय दयाला शिव के बाण सिर काट रहो काल जाल जम जो न साकाय सदका पंथा ताट्यो खात खर्चत किचन घुटत नाही राम रतन तन काट्यो पसमा पोत आखन पितर अपना किया पाया आगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोग सबाया टोडी महला पंजमा किरपन तन मन किरप परे सा संग भजन कर स्वामी टाकन कोई कर रहो अनक छिद्र बोहित के छुटकत थम न जाही करे जिसका बोहित सियारा दे खोटे संग करे गली सैल ठावत चाहे ओ ए उहां ही है तरे जो

तिन्नताप निवारण दुखंता सुखरास ताको बिघन को लागे जाके प्रव्या के अरदास संत प्रसाद वैद्य नारायण करण कारण प्रवेक।

ताप हाथ दे राखा जने अपने हर होए माई बाप जे जंतो होए मेहरबाना दया तारी हरनाथ नानक सरण परे दुख भंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरण परे दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते दुश्मन कौन उधारे राहो खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परमगत पाई है माया राच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागे सुर जन मिले प्यारे नानक अनंद करे हर जाप जाप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा करते जा चौप देख अंकार सतगुरु प्रसाद हाँ हाँ लपटोरे मुड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सुजानी मोरी राव अपने राम नचिनो खिनो जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगे सो मन नाम बसायो छुड़ जाय बाहु जितलायो सो संचयो जत भुगत सायो अमृत नाम तो सा नहीं पायो काम क्रोध मोह कोप भरिया गुर प्रसाद नानको तरिया टोडी महला पंजमा

आयो हर हर जापता भरत ने महारते आयु गोसल सब खेमा आचार बिहार जात हर गुनिया महान कीर्तन हर सुनिया कौना ने जन डाक रुपया सब किस तिसके ग्रह में आया टोटी महल्ला पंचमा कर चौथा दो पद एक अहंकार सदगुरु प्रसाद रूडो मन हर रंगो लोड़ाए गाली अरनी ना होए राहो हों टुंडें दे दर्शन कारण बीते बीते पेखा गुर मिल परम गवाया है ए बद भाई मैं साधु कनो लेख लिखे उतर माथा ए बद नानक हर नैन आलोए टोडी महला पंजवा गर्व के लड़ो मुड़ो हियो रे यो महाराज रे मायो डेर न्याय मोह पाक्यो रे राव कणो कणो कणो सदलोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महाराज रो गाथ वाऊ सोले पढ़ियो ने पागड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राचद मिट्यो रे जाको लैणो महाराज री गाठड़ियो जन नानिंगर पास ना बौड़ियो रे टोडी महला पंजमा कर पंजमा दो पदे को अंकार सतगुरु प्रसाद

रूप अनुरूप मेरे कछ न बिचार्यो प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन बेखो लालन पाठ बीच कोई अनुचिता हर के पचीना

ला पंजवा प्रभु तेरे भागी तुर दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा में मेरी लोचा पूर राव दया दिस राव रया जा तुमरा अंतर जामी सदा दूर तुमरा तत्काम करते से जन कब न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपद पो

बिन प्रीतमा दर्शन देखन को तारी मन आस रहो सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किलवित नास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जाको दास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा पेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपज कोड़ सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पत पावन जी प्राण मान सो दाता अंतर दामे मन को पावन राहु सुंदर सुगण चतुर साब बेतार दास निवास भगत गुण गावन निर्म रूप अनूप स्वामी करम भूम बेजन सो खावन विस्मन विस्म पै विस्मादार नियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर दस दीवा नानक दास दाबल जावन टोडी महला पंजवा माई माया चल तृण की अगन मेकी छाया गोविंद भजन बिनाड़ का जल रहो छोड़ ध्यान बचत राय दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामे मानक देखा हो उत्तम पल वेद व्यान करत साधु जन सा भागहीन समझत न खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दैन पै मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मिठे वडे भाग देवे परमेश्वर कोट भला दर्शन गुर डिठे राहु गुण गावत अचत विनाशी काम क्रोध बिनसे मद ढीठ असर भय साच रंग रथ जन्म मरण बहर नहीं पीठ बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बहुन तलाय सब मुठ टोडी महला पंजवा सा संग हर हर नाम चितारा सहजना दोवे दिन राति अंकुर पलो हमारा रहो गुरपुरा पेटो बड़पागे जाको अंत न पारा बारा कर गए काढ़ लियो जने अपना भिक्षागर संसारा जन्म मरण काटे गुरु वचने बहुण संकट द्वारा नानी शरण गाय स्वामी के पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजमा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोग वै हर सिमरत बिन से सब दुख राह कोट जन्म के किलबकना से सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पै आसा दर्शन भेट त्युदरे भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गाय सो सागर जन्म मरण फिर बौ गर्भ नान धोख टोडी महला पंजमा हर हर चन हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहो पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर तत् विचारे गुण गावत तल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ न बिचारे नाम रतन सुन जाप जाप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एको अंकार सतगुरु प्रसाद कायो कांपनी अदमाई और जो कन कामनी के रस न कीर्त प्रभ गाई रहो जग झूठे को साथ जान कहता सो चुप जाई दिन बन सिमरो नहीं कब होत जो संग सहाय मगन रहो माया में निजन छोटी ना मन की काई कह नानक अब नाहि अनथ गत बिन हर के शरण आई टोडी बाणी भगतां की को अहंकार सतगुरु प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जर की माछुरी चरे खजूर कायरे बकवाद लायो जिन हर पायो तने छपायो राव पंडित होके वेद

राव राम संग नाम देव जन को परत गया आई एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई भनत नाम देव सुकृत सुमत भय गुरुमत राम कह को न बैकुंठ गए तीन छंदे खेल अछय रहाओ कुम्भार के कर हांडी अछय राधा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अछय रांडी सांडी हांडी गो बाणी एक कर ही गया छ पैसुर माथ सिंह गो देवल मद लीग अच लीग सिंह ही गो तेली के करते लिया छ जंगल मद बेल गो माली के करके लिया छ केल बेल तेल गो संता मद गोबंद अच गोकुल मद श्याम गो नाम मद राम अच राम श्याम गोबंद गो राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अखत कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे बद गुरमत हर राम राम राव नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खर दर्शन गावे राम शंकर क्रोड तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमा सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत पाम नानी कृपा करी हर जिन को ते संत परे हर राम बैराड़ी महला चौथा मान मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हरनी को गुर सतगुरु दान दिवायो राहो ते जन को मन तन तब देव जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपेत देव जिन हर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीश्वर तब हर हर हर दस त्यायो जन नानक को हर बेटे स्वामी दुखों में रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहो जो कुछ करे सो आपे स्वामी हरे आपे कार कमावे हरे आपे ही मत देवे स्वामी हरे आपे बोल बुलावे हरे आपे पंच तत्व विस्तारा वे तातु पंच आप पावे जन नानक सतगुरु मेले आपे हरे आपे झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जाप मन राम नाम निस्तारा कोट तंत्र के पाप सब खोवे हर पौधर पार उतारा रहो काया नगर बस हर स्वामी हर निरपो निर्वैम निरंकार हर निकट बस काचो नजर नयावे हर लादा गुर विचार हरे आपे सास

महल्ला चौथा जाप मान्यार निरंजन रंकारा सदा सदा हरताय सुखदाता जाकाय अंतन पारा बारा राहु अगन कुंट में उर्द लिवलाकार राखे उधर मजारा सो ऐसार सेवो मेरे मन हरियंत चढ़ाबनहारा

पहाड़ी महल्ला चौथा। जाप मन हर नाम नित्य आये, जो इच्छे सोए पर पावे, पर दुख न लागे आये। राहु सो जाप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर सो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा, किस कीमत कही न जाए, नानक सुन तुम्हारी हर दियो, पावत बै छुडाए। बैराड़ी महला पंजवा कर पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संत जना मिल हर दस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, राव जो चाह सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम जिवायो।

आपने हर रंगो कर हर रंगो की ना माने सोने डे तन कमलिए बार क्या टुंडे पैकियां दे सुलाया नैनी पाप का कर स्वीकारो तांस वागन जानी लागे जासो तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जातन कंत न पावे करण पलाव करे बो तेरे सातन महल न पावे विणकर्मा की दिपाइये ना ही दे बो तेरा तावे लाभ लोभ अहंकार की माती माया माहे सुमानी इन बातें सो पाइये ना ही पाई कामण ए आनी जाय पचो सो आगणी वाहे किन्नी बातें सो पाइये जो किच करे सो भला कर्मानी हिकमत हुकम चुकाइये जाके प्रेम पदार्थ पाइये तो चरणी च दलाइये सो कह सो की दे तन मन दीजय सा परम लाइये ਏਵ ਕਹਿ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਨਿਭਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਏ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚੁਚਰਾਈ ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਕਾਮਣ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਭਰਾਈ ਅਸੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿ ਕੀ ਮਾਤੀ ਐ ਨਿਤ ਪਾਏ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿ ਸਰੂਪ ਜਖਣ ਕਹੀਏ ਸਾ ਸਿਆਣੀ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ जैसी में आवे खसम के बाणी तैसुरा करें ज्ञान में लालो पाप की जंजरा काबलू ताया जोरी मंगे दान में लालो शर्म धर्म दो चप खलोए कूड़ भरे प्रदान में लालो काजिया बामणा की गल थकी अगद पड़े सैतान में लालो मुसलमानिया पड़े कते पा कष्ट में करे खुदाए वे लालो जात सनाती हो रिंदवाणी ए पी लेखे लाए वे लालो खून

रंगरवाए बैठा वेखे वख अकेला। सचा सो साहिब सच तपाव सो सचड़ा न्याओ करे गोला काया कपड़े टुक टुक हो सी हिंदुस्तान संभाल सी बोला। आवन अठतरे जान सतन में होर प्योर सिमरत का चेला। सच की बाणी नानक आखे सच सुनाय सी सच की बेला। तिलंग महला चौथा कर दूजा एक ओहकार सतगुरु प्रसाद। सब आए हुकुम खसमा हुकुम सब वर्तनी सच साहेब साचा खेल सब हर तनी। सलाहो सच सब उपर हर तनी जिस नाही कोय शरीक किस लेखा हो गनी। राह पौन पानी धरती आकाश कर मंदर हर बनी। विच वरत नानक आप झूठ कोहो क्या गनी। तिलंग महला चौथा नित नेपल कर्म कमावे बफावे दुर्मतिया। दवयान बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया। सबाजी सहसार ना चेते हरनामा खिन में बिन सह सब झूठ मेरे मन त्याय रामा। राव सा बेला जित न आवे जित सा वेला चेतना आवै जित आए। कंटक काल ग्रसै तिस नानक लय छाए जिस कृपा कर हृदय वसै। तिलंग महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। खाक नूर कर दंग आलम दुनिया आए असमान।

तेरा आधार रव है तू होनहार अगम अगाध उच अपार जो तुझसे वैतन को दुख नाहे गुरु प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिशा सो तेरा रूप गुण दान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपया तिसको बलिहार तिसके संग तरै संसार को नानक प्रभलो चापूर संत जना की बाछ तूर तिलंग महला पंजमा कर तीजा

ऐसा तुम सम्राट आकात्या गोत्र दियो पिंड तरी रास राम तरी सुख पाया सद नानक की अरदास तिलंग महला पंजमा करती जा करते कुदरती मुस्ताक

दीपा खुद खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सरण जे तो दर आराधे सो क्यों दो जग जाए अजराइल यार बंदे जितेरा आधार गुना उसके सब लिया फू तेरे जन देखे दीदार दुनिया चीज बिरहाल सगले सच सुख तेरा नाव गौर मिल नानक बुझिया सदाए कस गाओ तिलंग महला पंजवा मीरा दाना दिल सोच मोहब्बत मंदन बसे सच सा बंदी मोच राव दीद ने दीदार साहेब कच नहीं इसका मोल पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा आतोल दस गिरे दह दिलावर तू ही एक करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक तिलंग महला पहला कर दूजा

रहो जिन रंग कंत नाराव्या सप चुरे ताणी हाथ पछोड़े सिर तुणे जबरैन बिहानी।

बताए हुकम जाने नानका पोचंदन लावे गुण कामण कामण कराए तो प्यारे को पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहया मिलिया कही है रे सोई जो जे बो तेरा लोचिए बाती मेल ना होई तात मिले बिन तात को लिव

पछाण अप्यो पीवे जो नानिका परम परम समावे सहजे सहजे मिल रहे ममरा पद पावे तिलंग महल्ला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुरु को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहो हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए जिन गुरु का पाणा मन्या तिन कोम कोम जाए जिन सतगुरु प्यारा देखिया तिन को हों वारी जिन गुर की चा करे तिन सत बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुरु सेवा ते पाई है गुरमुख ने चारा जो हर नाम ते आइंदे ते जन परवाना

लाइया, हर हर कदे न चेते हो जम पकड़ चलाइया, जिन हर नामा हर चेते हृदय हर धारे, तिन जम नेड़ न आवे गुरसिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जान है, नानक जिन सतगुरु पेटिया रंग रलिया मन, सतगुरु दाता आखिए तुझ करे पसाओ। हों गुर विटो सदवारिया जिन दितड़ा लाओ, सो धन गुरु साहब आसर दे सुनेहा, हों वेख वेख गुरु विकसिया गुरु सतगुरु देहा। गुरु रसना अमृत बोलदी हर नाम सुहावे, जिन सुन सिखा गुरु मल्या तिना भुख सब जावे। हर का मार्ग आखिए को कित विद जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर चलाए जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या से सा बद दाने, हो सतगुर कौ सरवारिया गुरु बचन सुमाणे। तू ठाकुर तू साहेब तू है मेरा मीरा, तुद पावे तेरी बंदगी

एक अहंकार सदगुरु प्रसाद चेतना है तो चेत लै ने दिन में प्राणी चिन चिन उदे हाथ है फूटे घट ज्यो बानी रहाओ हर गुण काय न गावे मोर के अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मरण पछाना अज हूं कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावै कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावै तिलंग महला नवा जाग लेहो रे मन जाग लेहो का काफल सोया जो तन उपजो संग ही सोपी संग न होया रहो मात पिता सुत बंद जन हित जांस्यो कीना जियो चुट्यो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्यवहार जको तुम जानो नानक हर गुण गाय लै सब सुबन समानो तिलंग महला नामा

जय है वेद गुरु प्रदेश्या सो सुन रे भाई नानक त पुकार के गह प्रभ चरण आई तिलंग बाणी भगता की कबीर जी एक अहंकार सतगुरु प्रसाद वेद कते विपतरा भाई दिरका फिकर न जाए टुक दम करारे जो करो हाजर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे ये जो दुनिया से हर मेला दस्तगिरी ना है राहो दरोग पड़ पड़ खुशी होए बेखबर बाद बका है हक सच खालक खलक म्यान श्याम मूर्त ना है आसमान म्यान लहंग दरिया गुसर करदन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जय तहां मौजूद अल्लाह पाकंग पाक है शक करो जे दूसर होए कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए नाम देव जी मैं दुले की टेक तेरा नाम कुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदारा रहो करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पे तू मनी दरियाओ तू दे अंदर

0: रखो सुखबरी बल बल जाओ बल बल जाओ निकी तेरी बेगारी आले तेरा नाऊ राओ कुजा यमन कुजा रवते कुजा मैं रवि द्वारका नगरी रास भगोई खूब तेरी पगरी मिठे तेरे बोल द्वारका नगरी काई के मंगोल चंदे हजार आलम एकल कान्नाम चिन्ह पातशाह सामले बरना असपत गजपत नर नरेंद्र नाम के स्वामी मीर मकंद एक अंकार सतना
1: काल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद राग सुही महला पहला चौब दे कर पहला भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध खो जाव दूध कर्म फुन सुरत समाय न होए निरास जमाव जपो ताए को नाम अवर निराफल कामा रहा अवर निराफल कामा रहा एहो मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद न आवे रसना नाम जपो तब मथिए इन विधि अमृत पाव मन संपट जित सत सरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवेन बिद साहिब रवत रहे कहंदे कहे कहे जावे तुम सर वरना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हों सालाही सच्चा सोही हों सलाही सच्चा सोई सोही महला पहला घर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोड़ काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जप मन मेरे हो बहु चाकर साचे केरे रहा ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बांधन बांधयान सब जग पवै सेवा करे सो चाकर होए जल थल महिल रव रहा सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए सोही महला पहला घर छेवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद जल कहे चलकना कोट मकालड़ी वास धोत्या झूठ ना उतरे जिस धोवै तिस सज्जन सही नाल मैं चलद्या नाल चलन जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन रा कोठे मंडप माड़ियां पासों चिटवी चिटवियां टठियां कामण आवनी विचों सखणियां बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन घुट घुट जियां कावणे बग्गे ना कही अन सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन सिफल कामण आवनी ते गुण मैं तन हन अंदले पारे उठाया डूंगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा केत चाकरियां चंगे आई आवर सियाण पकेत नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटे जित सुही महला पहला जप तप का बंद बेड़ लाओ जित लंगे वाहेला ना सरवरना उछले ऐसा पंथ सुहेला तेरा को नाम जीठरा रता मेरा चोला तेरा एको नाम मजीठड़ा रता मेरा चोला साध रंग ढोला रा सजन साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवन गंठड़ी है मिलेगा सोई मिलिया होई ना विछड़े जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई होमे मार निवारिया सीता है चोला गुर सब बचनी सब गुर बचनी फल पाया सह के अमृत बोला नानक है सहेलियो सहु करा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा सुही महला पहला जिन कौ भांडे पाओ तिना सुबारसी सुखी करे पसाओ दुख वसारसी सहसा मूले नाहे सर परतारसी तिन मिलिया गुरे आए जिन को लिखिया अमृत हर का ना देवै दिखिया चाले सतगुर पाए पवे ना भीखे आ जा को महल हजूर दूजे नवे किस दर दर वाणी नाहे मूले पुछ तिस छूटे तां के बोल छूटे तां के बोल साहेब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मते कोई ढायो सारे साज जाने सब सोए नानक नाओ नानक बगसीस नदरी कर्म होए सुही महला पहला पांडा हछा सोए जो तिस पावसी पांडा आत्मलीन तोता अच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हछा होए सी मैले हछे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जे कर्म कमाए तिहा हुए सी अमृत हर का नाओ आप वरताए सी चलिया पात स्यों जन्म सुवाद वाजा वाए सी मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सुही महला पहला जोगी होवै जोग वै भोगी होवै खाए तपिया होवै तप करे तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सुनिजे भाई जे को बहे अलाय रहा जैसा बीजे सोलने जो खटे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सन निशाने जाए तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चेतन आवई सो दम बिरथा जाए हो तन बेची बह करी जे को लै विकाए नानक कम न आवई जित तन नाही सच्चा नाओ सुही महला पहला घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग न खिंथा जोग न डंड जोग न भस्म चढ़ाई है जोग न मुंदी मुंदी मूड मुंडाय जोग न सिंगी वाई है अंजन वाहे निरंजन रही है जोग जुग तेव पाई है गली जोग न होई एक दृढ़ कर सम सर जाने जोगी कही है सोई रहा जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना हाथाड़ी लाई है जोग ना देश संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन वाहे निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सतगुर भेटे तां सही सा तूट तावत वर्ज रहाई है निजर जरे सहज धुन लागे घर ही परचा पाई है अंजन मह निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मद रही है सा जोग कमाईये वाजे बाजो सिंगी वाजे तो नृपो पद पाई है अंजन मह निरंजन रही है जोग जुग तौ पाई है सुही महला पहला कौन तुरा जी कवन तुला तेरा कौम कमन सुराफ बुलावा कौन गुरु कै पह दिखया लिवा के पह मुलक रावा मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना तू जल थल मैयल परपुर लीना तू आपे सर्ब सुमाना रहा मन तरा जी चेत तुला तेरी सेव सुराव कुमावा कटी पीतर सो सो तोली अनबित चेत रहावा आपे कंडा तोल तुरा जी आपे तोलन हारा आपे देख आपे बूझे आपे है वनजारा अंदला नीच जात पर देसी खिन आवे तिल जावे ता की संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे राग सुही महला चौथा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम अराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन पर बोधियार पिया रस गटके रहा सत संगति उत्तम सतगुर के दी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा धार मेलो सत संगत हम धोवे पाग जान के राम नाम सब जग है राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम वेचियो सिर गुर के जन नानक नाम परियो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुही महला चौथा हर हर नाम भजियो परखोतम सब बिनसै दाल दलका भाव जन मरना मिटियो गुर बसबदी आर्य अस्तर सेव सुख सुमगा मेरे मन भज राम नाम अति बिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे सिर वे चलियो मुल महगा रहा नरबत राजे रंग रस माने बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रत फलगा दर्शन संत देव सुख पावे प्रभलोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको कीजे दास अरनुका जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटो सद घूमगा सुई महला चौथा रनामा हर रंग है अरंग मजीठे रंग गुरतुठे हर रंग चाढ़िया फिर बौड़ ना होई भंग मेरे मन हर राम नाम हर रंग गुरतुठे हर उपदेसे हर भेट्यो राव न संग राव मोंदे आनी मन मुखी फिर आवन जाना हर प्रभ चेतन आयो मन दूजा पाओ सलांग हम मैल परे दुचारी हर राखो अंगी अंग हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवाले आ सब लाथे किल विखवान हर दीना दीन दयाल प्रभ शरणागत मिलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग सुई महला चौथा हर हर करे नित कपट कुमावे हिरदा सुध ना होई अण दिन कर्म करे बहु तेरे सुपने सुख ना होई ज्ञानी गुर बिना भगत ना होई कूरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई राव जब तक संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग न जाई अंतर रोग महाभयाना दूजे भय खुआई बार भेख बहुत चितराई मनुआ दै दिसतावे होमें व्यापिया शब्द न चीन फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो बूजय सो जन नाम त्याए गुर प्रसादी एको बूजय एक समाए समाए सुही महला चौथा कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खुजाई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरे मन हर हर सांत वसाई तिस नागन बुझी खेने अंतर गुरमल सब भुख गवाई रहा हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम गिरडाई हों हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेले हर पाई सुही महला चौथा

मन रंग माणे सदा आनंद रहे दिन राती पूरे गुर के शब्द सुमाणे राउ हर रंग को लोचे सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मन मुख मुगद नर कोरा होए जे सौ लोचे रंग ना होवे कोए नदर करे ता सतगुर पावे नानक हर रस हर रंग सुमावे सुही महला चौथा जेवा हर रस रही अकाए गुरमुख पीवे सहज सुमाए हर रस जन चाखो जे भाई तौ कत अनत साध लुभाई रहा गुरमत रस राखोर तार हर रस राते रंग मुरार मन मुख हर रस चाखिया जन जाए मन मुख हर रस चाखिया ना जाए होमे करे बहुती मिले सुजाए नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण गावे सुई महला चौथा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपते आ उत्तम पदवी पाए पुछो बिदरदासी सुतए किसन उतरिया घर जिस आए हर की अकथ

उनका उत्तर जाएगा झूठ गुमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हों करी वखियान। सुही महला चौथा कर सतवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना साकू तू ठाकरी उच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई ज्यों भावे त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिनि अवरना कोई रा मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काश्त अगन तरी जे बकरी सिंह कितै थाए राखे। मन हर जाप भरम प दूर की जाए हर की वडे आई देखो संतो हर निमाने।

ढीठो मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गुर कृपा तारी प्रभात देन सतारे सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद।

लोभ मोह तजारी। दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी, कहो नानक तत विचारी। राम नाम जप पार उतारी, सुही महला पंजवा। लोभ मोह मगन अपराधी, करण हार की सेवना सादी। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोह निर्गुण यारे। रहाउ तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानुख अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सुरनाया। सुही महला पंजवा। पेखत चाखत कही अत अंदा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त कहो जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सो केश कार जित छुट है पुरानी, हार हर नाम जप अमृत बानी। राम घोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारे कछु न जाता। रखे पोचार माटी का भांडा, तुक चीला मिले जम डांडा। काम क्रोध लो मोह बादा, महाकरत मह निरकत जाता। नानकी अरदास सुनी जय, बूढ़द पाण भ्रमेर ली जय। सुही महला पंजवा। जीवत मरे बूझे प्रभ सोए, ते जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इयो दुतर तरिय, मिल साधु हर नाम उचरिय। एक बिना दूजा नहीं जाने, काट काट अंतर पार ब्रह्म पछाने। जो किच करे सोई भल माने, आदि अंत की कीमत जाने। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जाके हृदय वसे मुरारी। सुही महला पंजवा। गुर परमेश्वर करण हार, सगल सहित को दे आधार। गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द सा तन ते जाय। राव पव जल डूबत सत गुर काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गांड।

सुख सहज मन आवै सांत, सतगुर की देना वडभागी पावे, नानक गुर कौ सद बल जावे। सुही महला पंजवा, गुर अपने उपर बल जाइए, आड़ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी रहा। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूर्ण निर्मल रीत, संत प्रसाद वसे मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, ए बनंती सुन प्रा मेरे, देह नाम कर अपने चेरे रा। अपनी सरन राग प्रभ दाते, गुर प्रसाद कने विरले जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसे मरे चीता, नानक करे अरदास, विसरनाई पूर्ण गुणतास। सुही महला पंजवा, मीत साजन सुत बंदप पाई, जात कत पेखो हर संग सहाई, जात मेरी पत मेरी धन, हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम, राव पार ब्रह्म जप पैर सुना, कोट आवद तिस विदित नाय, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंट का जम तिस नाम विदारी, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गा, आनंद विनोद मंगल सुखता, चल सखिए प्रभ रावण जा।

पंजवा दर्शन को लोचा सब कोई पूरे भाग प्राप्त होइरा श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम विश्व कृत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई।

ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना जप मन गोबिंद के अवर नहीं को लेखा संत संग मने छाड़ दुबदा की कुरिया राम निर्गुण हरिया सर गुण तरिया अनक कोटरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया मन विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया

संग परिया हर दुआरे करिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुरना फिरिया सुही महला पंजवा रास मंडल कीनो आकारा सगलो साज रखियो पासारा रा बहुविध रूप रंग अपारा पिखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चेन नाही मुख ना मासारा कहर न जाई खेल तुहारा नानक रे न संत चरणारा सुही महला पंजवा तो मैं आया सरणी आया भरोसे आया कृपा आया ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरे बठाया रा महादुतर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया रहो धर्म राया ग्रह अंधकूपाया पावक सगराया गही ओढ़ सदाया नानक कर त्याया मैं पूरा पाया राग सुही महला पंजवा कर छेवा एको अंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम उदारा तुठा सच्चा पातशाह तब गया संसारा भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सृजनहारा रा सच तेरी समगरी सच तेरा पा दरबारा सच तेरे खजीने सच तेरा पसारा तेरा रूप अगम अनूप तेरा दरसारा हों कुरबाणी तेरिया सेवका जिनार नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया गम्य पारा गुरु नानक मिले।

तेरे गुण गावा दे बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाऊ जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत

मैं अकथ न कथ न जाई जो तुझ भावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई एते कुकर हाँ बेगाना पौका इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला। मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा।

अगम अगोचर लाखी उपारा चिंता करो हमारी। चल थल मही अल पर पुर लीना कट कट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर शावा तेरे। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद भावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे बुलावल महला पहला।

सतगुर बूझ बुझाई राम। मेरा प्रभ बिसरे हौ मरो दुखाई सास गिरास जपो अपने। मेरा प्रभ बिसरे हौ मरो दुखाली सास गुरास जपो अपने। हर भाली दस बै सद बै रागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ अगमे अगो

तब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना। ज्यों आप चलाए तिवै कोई चालाए।

आई अचिंत नाम बसिया मन आई हऊ में माया शब्द जुलाई दर साची गुरते शोभा पाई जग

0: मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को समसर विख बौड़ ना मरे ना जम पिख कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ते आनन दिन गावे को नाम इस युग में वडियाई पाई पूरे गुर ते नाम त्याई जय देखा तै रहा समाई सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुरपुरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया राग बिलावल महला चौथा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों परे रे त्यों करना ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखता लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहा माया ग्रस्त परम तह प्राणी रख ले वो जन अपना ज्यों प्रहलाद हरनाकस ग्रसे वर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवना ओ ढोवै ढोर हाथ चम चमरे हर उर तरयो परयो सरना प्रभ दीन दयाल भगत भाव तारण हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करी हो जन नानक दास दासना
1: बल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान गुरमति शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा राख लाओ मेरे ठाकर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन भज राम नमे रामा गुरमत हरस पाई होर त्यागो नैफल कामा राव हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राखो उपमा तुद बिन अवर न कोई मेरे ठाकर हर जपिए वड्डे कर्मा नामहीन त्रिहग जीव तै तिन वड दुख सहमा ओ फिर जोन पवाइय मंद भागी मूड़ा जन्मा अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड कर्मा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा बलावल महला चौथा हमरा चित दुर्लभ मोह बिखिया बोह दुर्मत मैल परा हमरी सेव कर सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जाप नर हर नाम नर हरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुर पार परा राओ हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देवो मती जस करा तुमरे संग लगे से उधर है संग काष्ट लोहो तरा साकत नर होची मत मदम जिन हर हर सेव करा ते हर पागहीन दुराचारी ओ जन्म हुए फिर मरा जिनको तुम हर मिलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा गुरमत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा बलावल मल्ला चौथा आवो संत मिलो मेरे पहाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बहुत है कल युग खेवट गुर शब्द तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाउ। काया नगर में राम रसोत्तम क्यों पाइये उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख देखो। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन विसरे सब बिख रसो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जपे हर मंत्र।